एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चाओ पाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री इसके जगत के ईसा पोह पन बृष्ट गगन तें पही सब हिन आन बधाई दई धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब ने वाजा आखल पवन के सृजन हारे दाह जान मोहले हो बारे कभी ओ बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाथ दया रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मंद रह हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावह आप हाथ दया मोहे बचावह सुखी बसै मोर परवारा सेवक सेख सबै करतारा मोर शाणज कर दया करिया सबैरन कौ आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊ जो बर चाह सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी आहे चुन चुन सत्र हमारे मारी आहे आप हाथ दया मजै उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हूजो सदा हमारे पच्छा श्री हस्तो जो करिय हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बाल दुष्टन के

हे हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दै जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सुवारी शिवकुन को सब गुण सुख दियो सत्रन को परमो बाधे कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरिया स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछान घट घट के पट पट की जान जब उद करख करा करतारा प्रजात हरत तब देह अपारा जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेह ते बादन सृष्ट सब तार आप अपनी बूझो चार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको पेव न पावत बेदा ता कव कर पाहन अनुमानत महामूढ़ काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरहंकार का चिन्हत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहे बद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनुभ स्वरूपा रंग पयो राव कहे पूपा अनलज जे रज से दिनी खान बाहर रच दीनी कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट पयो शंकर एक अठा सगरी सृष्ट दखाय चंपावो आ जुगाद स्वरूप स्वयं पाव आब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार या सिख संगरो दुष्ट जिते उठ वर उत्पाता सकल मलेच करो रण काता जे आस तुहजता वसरणी परे तनके दुष्ट दुख तुहुआ मरे पुरख जामन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निगट नह है रक्षा हो ताहे सब काला दुष्ट अरे सट टारै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो ताके ताप तनक मह हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह शुवै सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारों कहा दार्द दुष्ट दोख ते रहा खड़केत मैं शरण तिहारी आप हास दैले हो उबारी सर्व ठार मोहो हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता

ध्यान को नित उठते हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरुष की देह मोह कोटिक बसन महेश कोड इंद्र ब्रह्मा के तेरा वसा से करोर जलेस दोहरा राम कथा जुग जुगिया टल सब कोई भाखत नेत सुरग बा सुरग बर करी पुरी समेत चाओ पाई जो एह कथा सुने अरगावै दुख पाप तेह निगत नयावै बिसन भगत की ए फल होई आद ब्याद शुवै सकै न कोई सम्मत सत्रह सहस पचामन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लाहो लेहु सुधारा दोहरा नेत्र तोंग के चरण तार सद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूर्ण कियो रागबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद विवाद ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को मांग तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने श्री अस पान कृपा।

दुख सब विसरना अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो सारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे। सदा सिवत सदा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधार साध नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाईया कार सांत सुख मन आए वसया जन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुरबान कीता गुरु बिटा हो जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनो संता हो सब तरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शबद तित कर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूर तुद वास कीते काल कंटक मारिया तुहर कर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होवा।

आप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित।

विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सेद हरो जे को खावे जे को पुंचे जिसका होए उदारो ये वास्त जी न जाई नेत नेत राखे उदारो काम संसार चरण राग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो सलोक महला पंजवा।

बोलना जी वाहिगुरू वाहिगुरू जी एक ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लईं ध्याए परे अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू सिमराउं श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेक बहादुर सिमरी आय कर नौन दे आवे ताई सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहेब जी सब थाई हुए सुहाय दसां पातशाहियां जी दे जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन पाठ उपदेश जी का ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी पंजा प्यारियां चौहान साहिब जादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख सुन किरन डिठ कीता तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी जिन्हा सिंघा सिंघनिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाई खोपनियां लुहाइयां चढ़खड़ियां ते चढ़े ताने आरियां नाल चलाए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी के सां सुवासां संग निबाहित ना प्रातन वर्तमान समें दे सरबत शहीदां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी पंजां तखतां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी किरदास जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियायत देख तेग फतेह दर्द की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी बख्शो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान धरना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जगो जोगिया टल धर्म का जय जयकार बोलो जी आप जी दे सिखां दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दे राखे आप वाहिगुरु जी हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार पिता जी श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां दे खुले दर्शन

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

सुंदर हार मंदर गुरु, सुंदर हार मंदर गुरु पंजवे सजाया है, सुंदर हार मंदर गुरु।

0: जो सिद्धांत अंदर प्रकाश होना है, गल एकाग्रता नाल सरवण करनी, उसे तरह का बाहरों माहौल बनाया गया, उसे तरह का जमीन के टुकड़े के उत्ते बा सिस्टम बनाया गया ताकि मनुखी मन हंकार नूं छड्ड के विसमाद विच आ जाए। जिहड़ियां इट्टां तो लंघ के बेध्याने तुरे जाने आ, उन्हां इट्टां दे थले इन्ने सिर लगे हुए ने, सारियां प्रकरमां च रखीए ते समा ना सकण। उन्हां दे विच ही कौम दे महान जरनैल, 20वीं सदी दे महान जरनैल संत बाबा जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले, उन्हां ने उन्हां दी मर्यादा नूं बचाउण वास्ते जामे शहादत पीता। ते जदों शहीदां दे लाशां दीआं गिणतियां कर रहे सन भाई जसवंत सिंह खालड़ा, ते अज दे दिन 6 सितंबर 1995 नूं सूरमे नूं घरों चुकिया गया, लापता कर दिता गया। उह ते 1.5 साल बाद पता लगा, जिहड़ा कुलदीप सिंह कांस्टेबल सी उदों ते SPO सी, बाद विच उह सिपाही बन गया। उहने घर दस्सिया, पर घर दे आंदे रोज ते पुलिस वाले आउंदे, सानूं कोई आंदा अजे हैगा, कोई आंदा जेल ते आ। पर उह भाई कुलदीप सिंह जिहड़ा नाल मौके दा चश्मदीद गवाह, उहने दस्सिया जिद्दण उहनां नूं चुकिया उहनां नूं उदण ही शहीद कर दित्ता सी। मैं बेनती करा उन्हां दी शहादत दा दिहाड़ा भी अज है, चाहे हरिमंदर साहब दी पवित्रता होवे। मैं अगली गल करदा है, केवल गुरु नानक दा सिद्धांत हरिमंदर साहब दे अंदर नहीं, इह फलसफा।
1: 1550 KRPI रेडियो ते तुसी सुन रहे सी लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।
2: यू आर लिसनिंग टू KRPI 1550 रेडियो फर्नडेल वाशिंगटन।

द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो उग्र सैन को राज अभय भगतें जन दियो।

0: ਕੀਤਾ ਬਿੱਲੀ ਇਤਿਆਦਕ ਦੇ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਖੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸਨੇ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਨੋਕ ਲਾ ਕੇ ਬਰਛਾ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਬਰਛੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਠੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਆਈ, ਬੰਦੂਕ ਆਈ, ਤੋਪ ਆਈ, ਟੈਂਕ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ। ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਗਰਸ ਕੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਇਸਨੇ ਉਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਹੈ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਹੁੰਚੀ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਦੁਆਪੁਰ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਪੜਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ। ਆਪਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਿਆਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਬੂਲ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦੋ, ਉੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਸਿਆਣਪ ਆ ਗਈ, ਸੂਝ ਆ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਆਖਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕੌਣ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਆਏ ਦੇਣ ਲਈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਏ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਸਿਆਣਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੁੱਗ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਆ ਇਤਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਨ, ਕਿਆ ਉਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਆ ਇਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਝ ਬੋਝ ਸੀ। ਗਿਆਨ ਵਧਿਆ, ਸਿਆਣਪ ਵਧੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਆਣੇ ਨੂੰ ਪਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਆਣਿਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਯੁੱਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਝ ਤੇ ਸਮਝ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਤਨੀ ਸਿਆਣਪ ਵਧੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਯੁੱਗ ਅਹੰਕਾਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾਰਦ ਨਾਚੇ ਕਲ ਕਾ ਭਾਉ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹਿ ਰਾਖੇ ਭਾਉ। ਮਨ ਨਾਰਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ नारद नूं बड़ा सियाणा मनिया गया, बहुत सियाणा। हर रिशियां दी महफिल विच उसका सन्मान, टुटिया नूं जोड़ देना उहदे कोल सियाणप है, और दो सियाणिया नूं तोड़ के रख देना यह भी उहदे कोल सियाणप है। बड़ी वड्डी सियाणप है जोड़ तोड़ दी, और जोड़ तोड़ उही कर सकदा है जिहदे कोल जोड़न दी भी समझ होवे, तोड़न दी भी समझ होवे। नारद सारे रिशियां दे सन्मानत, हर थां ते प्रगट और हर तरह दी खबर रखण वाला। यह युग सिर्फ हुण अपने घर दी खबर नहीं, जमीन दे चप्पे चप्पे दी खबर रखण वाला है। अज मनुख सारी दुनिया दी खबरां अखबार विच पढ़दा है, टेलीविजन ते देखदा है, रेडियो राही सुनदा है। बड़ा सियाणा यह युग है। गुरु नानक देव जी महाराज दे समय भी लोकी दूर दराज तक जान लग पए सन। सतगुरु आप भी नवखंड पृथ्वी दा जो है भ्रमण करके देश विच वापस लौटे सन। बड़ा भ्रमण, बड़ा भ्रमण। बर्मा विच गए, तिब्बत भूटान गए, फिर रशिया का इलाका, अफगानिस्तान, ईरान ते सारा अरब। बड़ा भ्रमण गुरु नानक दा। युग बड़ा सियाणा हो गया, इसनू पढ़ाना सी, इसनू समझाना सी, तो समझान लगिया कुदरती गल है, इसदे अहंकार नू पहले मिटाना सी, इसदे अहंकार नू पहले दूर करना सी। इसे ही कलयुग देच महात्मा बुद्ध ने भी देखिया, सियाणा मनुख जरूर हो गया है, अहंकारी है, तो उसने बनाए भिक्षु, भिखारी, भिक्षु। दरअसल जद भिक्षा ही लेनी है तो मान तान वाली ते कोई गल है नहीं, हंकार दी कोई गल ते हो ही ना। आखिर एक भिक्षु, एक मांगत किस चीज दा अहंकार कर सकता है, उहदे कोल की हंकार रहेगा। मनुख दे हंकार नू मिटाण दी खातर भिक्षु महात्मा बुद्ध ने बनाए, पर यह सर्वव्यापी धर्म नहीं सी। अगर सारे भिक्षु बन जान, सारे पृथ्वी दे लोग, तो फिर देण वाला कौन होवेगा? सारे मंगण वाले ने, इन्हां नूं कौन देगा? कौन इन्हां दी झोली दे रसद पानी पाएगा? कौन इन्हां नूं भोजन खिलाएगा? कौन इन्हां नूं वस्त्र देवेगा? अगर सारे भिक्षु बन गए तो भिक्षु होना महात्मा बुद्ध दी इह देशना कुछ एक लोगां लई सी, सारिआं लाल लई सी, सारिआं लई इह लाभकारी नहीं सी। गुरु नानक देव जी महाराज ने लंबी निगाह नाल देखिया कि सारे लाभ उठा सकन, कुछ खास चुनिंदा बंदे ही क्यों। जैसे एक कॉलेज होवे किसी शहर विच, तो उत्थे ढंडोरा पिट दिता जाए, कुछ घरां दे बच्चे इस विच पढ़ सकदे न, बाकी नहीं। बाकियां लई दरवाजे बंद, इत्थे बहुत वड्डी बेइंसाफी होवेगी। तो बौद्ध धर्म सारिआं लई नहीं सी। अगर सारे ही भिक्षु बन जान तो फिर कौन उन्हां दी झोली भरे, कौन भिक्षा देवे? और सारे ग्रस्त दा त्याग कर देन तो धरती ते चंद सदियां तो बाद सुन्नी हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा, मनुखता ही मिट जाएगी, मनुखता ही खत्म हो जाएगी। तो गुरु नानक दी दृष्टि दे समूह ब्रह्मंड सी, सारे ब्रह्मंड दे लोकी सन। तो आपने शब्द दिता सिख, बड़ा निर्माण शब्द, बड़ी जिस दे गरीबी है, बड़ी विनम्रता है। सिख, मैं सिखना है, मैं सिखण नू तैयार हां, मैं सिखना चाहना, और मैं कुछ नहीं जानना। इस तरह दे सारे जज्बात कठे होवन, इस तरह दियां भावनावां कठियां होन, ते कोई बनदा है सिख। जो आखे मैं बहुत कुछ जानदा, मैं बहुत कुछ जानदा, हंकारी होवेगा, सिख नहीं है। इस वास्ते सिख हंकारी नहीं हो सकदा, और हंकारी सिख नहीं हो सकदा। इन्हां दोहां दा आपस दे संबंध नहीं है। गुरु नानक ने मनुख दे मूल रोग नूं समझिया, हां मैं, मैं हां, मैं ही हां, और कोई नहीं। इस सदीदा मूल रोग हमे रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस्तीना। मनुख दे कोल जड़ा बुनियादी रोग है अहं हंकार। ये धार्मिक साधना करदिया भी खड़ा रहिंदा है, ये दान पुन दे राही भी प्रगट हो जांदा है, ये होर तरह तरह दिया साधना करदिया होया भी गुणा दे आसरे ते भी खड़ा हो जांदा है, औगुणा दे आसरे ते भी खड़ा हो जांदा है, मिटदा ही नहीं अहंकार। अहंकार नूं मिटाउण दी इक्को ही औषधि गुरु नानक ने लभी, भी प्रथम तो ए कबूल कर कि मैं कुछ भी नहीं जानदा। आखिर अहंकार ते इत्थे ही टिकदा है कि मैं बहुत कुछ जानदा, मैनूं बहुत कुछ पता है। ते जद आखे कोई मैनूं कुछ भी नहीं आउंदा और मैं कुछ भी नहीं जानदा, कम से कम सच बारे जीवन बारे परमात्मा बारे मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो अहंकार दे ते सारे आधार ही टुट गए। अहंकार जिना जिना कुर्सियां ते बैठदा सी उते कुर्सियां ही सारियां टुट गईयां। उते जानकारी दी कुर्सियां ते बैठदा सी, मैं सब कुछ जानदा, मैनूं हर पक्ष दी समझ है, मैनूं सब कुछ पता है। सिख मैनूं कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानदा, और जीवन दे किसे पहलू दी मैनूं कोई सूझ नहीं, मैनूं कोई समझ नहीं, ना जिंदगी दी ना जिंदगी नूं देण वाले दी। जद कोई ऐसा कबूल करदा है कि मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो अहंकार दे आधार मिट जांदे ने, उस दे टिकण दे आसन जिहड़े ने ओह टुट जांदे ने, और सिख वास्तविक एक मनमरता दी निर्माणता दी मूर्ति बन के उजागर हुंदा है, सामने हुंदा है। जैसे सारे औगुणा दा आधार गुरु नानक ने अहंकार नूं मन्निया है, सारे गुणा दी बुनियाद विनिमरता नूं मन्निया है। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तक, सारे गुण ते चंगियाईया दा जो निचोड़ है ओ है मिठास विनिमरता निर्माणता। निर्माण मनुख दे बोलां दे सख्ती नहीं होंदी, देखदे हां हत्थां दे छड्डियां ने पैरां दे छड्डियां ने पिंजर है, प्रभु ने जबान दे हड्डी नहीं बनाई, कन्नां दे भी बारीक हड्डियां ने, नक दे भी हड्डी है, मुंह मत्थे ते भी हड्डियां ने, बाहां दे भी हड्डियां ने, पैरां दे भी हड्डियां ने, पर जिस जबान ने बोलना है उस दे हड्डी नहीं, हड्डी सख्त होंदी है। इस गल दा प्रतीक है ए जबान तेरी बोल तो तेरे बचना तो तेरे बोलां दे सख्ती नहीं चाहिदी, जबान तो जो बोल निकलन उस सख्त नहीं चाहिदे। जितनी जबान कोमल है इतने ही बोल कोमल चाहिदे ने, जितनी जबान जो है लचकदार है इतने ही बोल लचकदार चाहिदे ने। जिस तरह जबान ही सारे रस मान दी है, इस तरह बोल भी रस देण वाले होन, स्वाद देण वाले होन, फिक्के ना होन। नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए। महाराज ते कहंदे ने जो फिक्का बोल रहा है ते सख्त बोल रहा है सारी जिंदगी उसकी फिक्की हो जाती है, ते फिक्का कौन बोलदा है जो सख्त सुभाव दा हो गया, ते सख्त सुभाव दा कौन हो गया जो अहंकारी है। अहंकार सारे औगुणा दी बुनियाद है, विनिमरता सारे गुणा दा आधार है, और जिथे निर्माणता आ जाती है मैं कुछ नहीं जानदा, मैनूं कुछ भी नहीं पता, और हाथ जोड़ के हर एक दे अगों जो है खड़ा है, ऐसा वेख के अंडिठ करन वाला निर्माण मनुख मिठास नाल भर जांदा है, रस नाल भर जांदा है, उहदे रोम रोम दे स्वाद आउंदा है, उहदे बोलां दे कोमलता, उहदी दृष्टि दे अमृत। सतगुरु ने यह पावन पवित्र वाक दिता, सिख तू कबूल कर कि मैं कुछ भी नहीं जानदा और मैं जानना चाहना। पहले जद कोई ऐसा कबूल करदा है कि मैं सीखना चाहना और मैं कुछ भी नहीं जानता, तो वो चल पे है, चल पे है, साधक हो गए, पर सब कुछ जान ले, सब कुछ जान ले, सब कुछ दा पता चल गया, ते फिर भी कहिंदा है मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता। ए महान हो गया, परमात्मा वर्गा हो गया। इस वास्ते गुरु सिख, सिख गुरु है, नानक भेद न भाई। वो सिख परमात्मा जैसा हो जांदा है, ईश्वर जैसा हो जांदा है, जैसे ईश्वर अपनी समर्था, अपनी कला ते अपने गुणा दा ढंडोरा नहीं पिटदा, ते कोई उसनो हंकार नहीं। अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। वो अमान है, उदे च कोई मान नहीं उस प्रभु दे च, भावे गुणा दा खजाना है। इसे तरीके नाल जद कोई सिख सिख के गुणा दा खजाना बन जांदा है, ते फिर भी कहिंदा है मैं कुछ भी नहीं जानदा, तो वो भी परमात्मा वर्गा हो जांदा है, ईश्वर वर्गा हो जांदा है। सतगुरु इस तरह दी दात हर एक दी झोली च पान।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: रामचंडी राग के अंदर धन गुरु नानक देव जी महाराज की बड़ी कीमती पंक्ति है, पुरख में नार, नार में पुरखा, कौन विधे विध जाने। धन गुरु नानक देव जी महाराज इतों से ही जागता है कि आप जिथे एक महान आत्म ज्ञानी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने, गुरुदेव ने, वसत के अवतारी पुरुष ने, उत्थे वो शरीर शास्त्री भी ने। अर्जुन ने पुरख में नाग, नाग में पुरखा, कौन विधे विध जाने। विधाते दी इस विधि नूं कौन जानदा है कि जो पुरख का शरीर है उसके अंदर नारी दे कण भी है और जो नारी का शरीर है उसके अंदर पुरुष के कण भी है। कोई भी जो शरीर है मां बाप तो आया है तो उसके अंदर मां की अंश भी है, पिता की अंश भी है, पुरुष के कणु भी हैं और नारी के कणु भी हैं। कहने ने पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके कि उसके अंदर पुरुष के कण से पूरे ने, नारी अधूरी है, अर्ध अंग है। और नारी स्त्री मैं इस वास्ते स्त्री हो सकी है कि उसके अंदर नारी के कण से पूरे ने, पुरुष अधूरा है, अर्ध अंग है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस गल नूं ते तस्लीम किया कि बाहर दी ए नारी पुरुष के अंदर दे हर अंग नूं संपूर्ण करती है, पर पुरुष का अहंकार प्रबल से उसने यह गल अंदरों ते तस्लीम की, बाहरों आखण दे संकोच किया कि पुरुष भी अर्ध अंग है, क्योंकि पुरुष के अंदर नारी अधूरी है, नारी दे अंदर पुरुष अधूरा है। पुरुष करके नारी अर्ध अंग है और नारी करके पुरुष अर्ध अंग है, अर्ध अंग अधूरा अंग। तो ये दो अंग मिलके संपूर्ण हो, ये अर्ध अंग बाहर की कशिश पैदा करता है, पुरुष दे अंदर नारी की कशिश, नारी दे अंदर पुरुष की कशिश। गुरु नानक देव जी महाराज का कहना कि वो जो अर्ध अंग है वो संपूर्ण होना चाहिए। इस अर्ध अंग की जिहड़ी संपूर्णता है ये पशुआ की तरह ना हो, मनुख आकर मनुख है, ये कोल सोचनी है, ये कोल विचार ने। तो इस समाजिक रसम न धर्म के दायरे में चलाने की आग्या हो, ताकि रिश्तों में पुख्तगी हो, रिश्तों में पक्याई हो, रिश्ते अटूट होवन, और जिस रिश्ते के विचोले आप धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बन जाओ, मोर गुरबाणी की लगे। और इसे तरीके प्राचीन ऋषि मुनि धर्म की मोर ला के इस अर्ध अंग की संपूर्णता करते सन, तो इसका नाम उन्होंने रखा कि विवाह। गुरमत विच यह नाम रखा गया आनंद कारज, खुशी का एक कम, क्योंकि अर्ध अंग संपूर्ण हो रहा है। ऐसी जेरी मर्यादा बनाइए परिपूर्ण परमात्मा ने हाथ बनाई, ईश्वर भी एक होंदा होया अनेक है, उसने मनुख नूं भी अनेक हिस्सों में वंडिया। जैसे कलगीधर पिता कहते ने अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। हे प्रभु तू एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। उसने खास करके पुरुष नूं भी ते नारी नूं भी अनेकता विच वंड दिता है। जो पुरुष किसी का बच्चा है, लड़का है, वो किसी का भरा भी है और किसी का फिर पति बनता है, किसी का पिता है, किसी का दोस्त है, किसी का पड़ोसी है। एक पुरुष कितने रूप रखता है, एक भरा भी है, एक पति भी है, एक पुत्र भी है, एक पड़ोसी भी है, एक दोस्त भी है। इस तरह स्त्री भी एक होंदे होया अनेक है। जे किसी की बच्ची है, किसी की धी है, तो किसी की भैन भी है, किसी की भैन तो किसी की सहेली भी है, किसी की पड़ोसन भी है। और फिर किसी भी पत्नी सारे रिश्तों में पकियाई होवे पवित्रता होवे इस वास्ते विचोला चाहिदा सी तो विचोला गुरु गुरु मोर लांदा है कि मनुख पुरुष भराव बने ते चंगा बने लोकी मान करन के भराव होवे ते ऐसा होवे ते पति बने ते आदर्शवादी और एक वाकई नमूना बने और ये पुत्र बने ते ऐसा के मां बाप फकर करन ये दोस्त बने ते ऐसा कि दोस्त उससे मान करन और ये पति बने ते ऐसा कि पत्नी का मान सम्मान ते इज्जत आबरू बने खुदी खुशी बने हू बहु इसे तरीके नाल इतनी ही जिम्मेवारियां ने बच्ची दी बच्ची ऐसी बने कि मां बाप के हिरदे हमेशा याद करते रहन साडे घर का बिछड़िया होया फुल से पहले महक वंडी पेके कर दे हूं महक वंड रही है सौरे कर और मां बाप की खुशी बनी रहे महक फैल रही है खुशबू फैल रही है पत्नी बने आदर्शवादी ते भैन बने महान दया मान करन भैना मान कर सारे रिश्तों में पकियाई ते पुख्तगी ते लाजमी है ते पत्नी होवे ते ऐसी कि सारिया ही खुशियां का सोमा बन जाए पति और पति मान कर तो इस लाजमी है कि रिश्ते महानता आवे किसी महान नाल संबंध जोड़े और इन्हों दो आत्मावान के संगम इन्हों दो शरीर के संगम दे कोई मदद चाहिए है जैसे परिपूर्ण परमात्मा की दुनिया की असं देखते हैं दोहां नू जोड़ने तीसरा चाहिए दो कागज जोड़ने ने गोंद चाहिए है दो कपड़िया नू जोड़ना है कोई धागा चाहिए दो इटा नू जोड़ना है तो बकायदा गारा सीमेंट इत्यादि चाहिए है दो लकड़ा नू जोड़ना है श्रेष्ठ किल कुछ ना कुछ है चाहिए दो दिलों नू जोड़ना है इतने दो दिल जोड़ने दो विचार नू जोड़ना दो ख्याल नू जोड़ना तो थोड़ी से चाहिए है बस ये गुरु तीजा है जो दोहां नू इक करदा है दोहां ते मोर लांदा है ते हुण मैं दो मिनट आपके होर लवां ते समाप्ति करा रिश्ते दुनिया दे दो तरह के खून दे रिश्ते ख्यालां दे रिश्ते विचारां दे रिश्ते मन दा रिश्ता जिहड़े खून दे रिश्ते ने इन्हां दीआं प्रणालियां तिन ने नानके दादके सौरे बे खून दा रिश्ता दादकियां नानकियां ते फिर सौरियां पर नानके दादके ते सौरियां दे रिश्तियां नू जिथों जन्म मिलदा है पति पत्नी तो ये रिश्ता खून दा रिश्ता नहीं है बच्ची किसे घर दी बच्चा किसे घर दा खून ते इक नहीं है किस तरह कहा जा सकता खून है ये खून एक नहीं है ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने भी नहीं मने सतगुरु की बाणी कहती है ये दिलां दी सांझ है विचारां दी सांझ एक जो दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए महाराज कहने ने असि पति पत्नी उसनों कहने हाँ विचार एक हो गए ने मूर्तियां दो ख्याल एक हो गए ने मूर्तियां दो ने पर इतनी गल स्पष्ट है जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार का जन्म उथे ही वरना नहीं जिथे विचार की सांझ हो जाए प्यार उथे पैदा होता है और जिथे प्यार है उससे एतबार भी आता है एतबार भी मनुख का उसे नहीं जाता और जिथे एतबार है कहने ने सदाचार का वास्ता भी उसे ही है और जिथे सदाचार है करतार दिया सारिया बख्शिशा भी उसे करतार दिया सारिया न्यामता भी उसे ने आप सारे सियाने बैठे बच्ची बच्चे भी ऐ बिताने सियाने ने ये रिश्ता विचार की सांझ का है ख्याल की सांझ का एक जो दोए मूर्ति ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਾਦਕੇ ਨਾ ਨਾਨਕੇ ਨਾ ਸੌ। ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਸੌਹਰੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੋਹਰੇ ਮੋਗ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਪੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਜੁੜਿਆ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਨ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਪੀਏ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਆਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਜੋਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ, ਜੋਤ ਕੀ ਮਨ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ। ਤੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਣ ਤੀਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗ ਬਣਾ ਲੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹਿ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਮਹਿਕ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਬਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪੁੱਛਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ, ਦੋਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਗੜਾਉਣਗੇ, ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਹੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਪੱਲੇ ਦੀ ਰਸਮ ਪਗਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

0: वाले
1: बाबा सतगुर के वाले अपने सतगुर के वाले
2: जदों गुरु तो बलिहार जाऊंगे वार वार सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु गुरु बहुत सारिया चीजा सुपने विच कटदी मंडी सकेत दा राजा राजा हरी सैन भाई कल्याणा जी दी संगत करके सिख बनिया जदों तरन तारण साहब आया ना गुरु अर्जन देव जी को दरबार च आया तो शब्द चल रहा सी लेख ना मिटई हे सखी जो लिखिया करतार लिखिया लेख ना मिटे को तो दे मन च शक हो गया वे गुरु को आने का की फायदा जे लेखे ही नहीं मिटने जे लेख ही नहीं मिटने फिर समर्थ गुरु को आने का की फायदा ओदे मन च शंका आ गया उसे रात गुरु ने नजर की मंडी सकेत दा राजा राजा हरी सैन सुत्ता पिया सुत्या पिया उनु सुपना आया सुपने विच उहदा जन्म चंडाल दे घर हो गया गरीबी विच जन्म होया वड्डा होया व्याया गया बच्चे ने मंग मंग के रोटी खिलाउंदा है और साध संगत सुपने विच ही मर गया जदों मर गया ओदे निके निके बच्चे रोंदे ने घर वाली ने धा मार के उपर अपनियां वंगां भन्नियां रोई एकदम ओदी जाग खुल गई पसीने नाल शरीर भिजे हो मैं तां राजा आ इह की होया मेरे नाल जदों ओदा सुपना लंघ गया सवेरे श्री गुरु अर्जन देव महाराज हस पए कहंदे हरी सैन तेरे मन दा भरम दूर होया कि नहीं होया कहंदे महाराज समझ नहीं आई कहंदे सुपना सुना ओदे हाथ जुड़ गए वी गुरु सुपने बारे भी जानदा ये चीज याद रखियो जो आपां करदे ओ वी गुरु नूं पता हुंदा जो आपां सुपने च सोचदे ओ वी गुरु नूं पता हुंदा एड्डी वड्डी करामात है मैं उन्होंने साधुओं के दर्शन किए ने जेडे सामने बैठे दी स्कैन कर लेंदे ने वी बंदा की है इन्ने तकड़े चशम दी दंदर आ गई उन्होंने चीज पर उन्होंने हुक्म हो जाता रब का वो पापी तो पापी बंदे नूं वेख के उहदा पाप नहीं वेखदे भलाई करदे ये साधु का सुभाअ है श्री गुरु अर्जन देव महाराज कहते सुपना सुना और रो पिया उन्हें सुपना सुनाया कहते महाराज बड़ा डरावना सुपना आया मैं चंडाल दे घर मेरा जन्म होया गरीबी बहुत सी वड्डा हो गया व्याया गया बच्चे छोटे मंग मंग के रोटी खिलाउंदा रहा महाराज निक्के निक्के बच्चे गरीबी बहुत मैं मर गया सुपने च घर वाली ने धा मारी जदों मंगा भन्निया धा मारी उदों मेरी जाग खुल गई महाराज मैं तां राजा आ पातशाह कहंदे हरी सैन चल तेरा भरम दूर करिए महाराज लै गए हजूर कहंदे ओ सामने नगरी है ओ पिंड विच हो गया ओ पिंड विच गया जदों पिंड च गया ना रौला पै गया पिंड वालियां ने फड़ लिया कहंदे ओ इह तां बंदा हजे कल मरिया इह बंदा किवें जींदा हो गया ओ कहंदा मैं तां राजा आ कहंदे नहीं तेरे छोटे छोटे बच्चे रोंदे श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने आप जाके जामनी देके कहा भाई ये वो बंदा नहीं है।

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वाल जाति पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है, जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: दुख भी बनिया रहेगा, संताप भी बनिया रहेगा कि होया तू चोटी दा धनवान हो, दुख भी बनिया रहेगा, चिंता भी बनी रहेगी कि होया तू दार्शनिक ते फिलोसफर हो, दुख भी बनिया रहेगा, कलेश भी बनिया रहेगा कि होया तू बहुत वड्डा शक्तिशाली राजनैतिक हो जाए, धनवान हो जाए, क्यों होया तेरा महल उच्चा हो गया, मकान बहुत वड्डा हो गया, दिल दी व्याकुलता नहीं जाएगी। ये सब कुछ उस दिन मिटेगा जिस दिन तो परमात्मा हो जाएगा। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए, भगत कबीर ऐलानिया कहते ने, बिगड़ियो कबीरा राम धोआई, साच भयो अन कते न जाए। कहिंदा संतां दी संगत विच आपां ऐसे तब्दील होए की हो गए, सच हो गए। हुण सच ते परमात्मा है, तो कबीर कहिंदे ने होवेगा परमात्मा सच, आपां भी सच हो गए। ध्यान नाल सुनना, बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई, मैं सच हो गया। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछानी, मैं कर सारे मनुखा का एक कोई भविष्य है, राम हो जाना, भगवान हो जाना, परमात्मा हो जाना। ते परमात्मा होने दे वसीले परमात्मा ने बख्शे हुए ने, सारियां नू दिते हुए ने, सीमत ने, ये असीम हो सकते ने। उनू याद कर करके किवें उसनू याद करिए, पहले दर तक पहुंचिए, फिर दर ने ही घर दे प्रवेश करा देना। इतनी सेवा इस वक्त कबूल करनी, प्रवान करनी सारियां दा, और मुखी सजना दा बार बार धन्यवाद।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजोनी शैवं गुरु प्रसाद हे प्राणात् गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणों में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया कर शरीर स्वस्थ कीन समय सिमरन्तु नानक

सच्ची रूहानी खुशी उस दिन मिलती है जिस दिन उदी संगीत दी धुन नूं कोई संगीतकार दाद देण लग पवे ते सिर हिला के सुनन लग पवे, मस्त हो जाए। संगीतकार नूं रूहानी खुशी मिलती है। आम बंदियां नूं रस आ रहा है, सिरे हिला रहे हैं, तो ठीक है, स्वाद ते है संगीत दा रस। पर जब कोई चोटी दा संगीतकार किसी दी संगीत दी धुन नूं दाद देंदा है, गायक नूं सच्ची रूहानी खुशी मिल जाती। कोई महान कवि किसी कवि दी रचना नूं जब दाद देंदा है तो कवि नूं रूहानी खुशी मिलती है। आम बंदे सिर हिला के सुन रहे हैं, ठीक है, रास्ते आएगा कविता च। पर जब कोई कवि भी रस लैण लग पवे कविता नूं सुन के ते दाद भी देवे, फिर कवि नूं रूहानी खुशी मिलती, क्योंकि एक जानकार मनुख ने दाद दित्ती है। जो संगीत नूं समझदा है वह दाद दे रहा है, जो इल्मे शायरी दा माहिरीन है वह दाद दे रहा है। ये शायर इस वास्ते नंद लाल को लाया है क्योंकि नंद लाल शायर ने कवि है। भाई साहब नू कहिंदे ने एक एक नज़म तुहानू सरवण कराणी। पहले मजनू दे संबंध च, फिर एक नज़म लैला दे संबंध। पूरी वड्डी किताब लिखी सी, पर सियाणे मनुख जिवें एक चावल दे दाणे नू देख के सारी देगची दा अंदाजा ला लैंदे ने, उह वी सुणाउण वाला वी सियाणा सी। एक एक नज़म सुणाउण दा उसने कहा, भाई साहब सुणन नू राजी हो। पहली नजम विच उन्हें दसिया मजनू कितों आया ते किस तरह प्रेम विच पै गया। इस नजम नूं उसने तरन्नुम विच सुनाया, गा के लयबद्ध होके भाई साहब जुड़ गए। फिर वह शायर कहिंदा, हुण मैं तुहानूं लैला दे संबंध च एक नजम सुनाण लगा। हुण भाई साहब हाथ नाल रोकदे ने, गला भरे होया, जबान नाल उसनू नहीं रोक सकते, हाथ नाल रोकदे ने। बाद जो कुछ भाई साहब ने लिखिया है वो तुसी सुन लो। भाई साहब कहिंदे ने, मगो अजहाले लैली बादले शौरी दा ऐ गोया, नंद लाल दे पागल दिल नूं लैला दा किस्सा ना सुना, लैला दी नजम ना सुना। मगो अज हाले लैली बादले शौरी दा ऐ गोया, कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साज। मैं ते मजनू दा किस्सा सुन के अपने होश गवा बैठा, पर जे हुण तू लैला दा किस्सा सुनाया मैं अपने प्राण गवा बैठा। ना सुना, मैं नहीं सुन सकता, मेरे कोल ताब नहीं है, मेरे कोल समर्था नहीं है, मैं नहीं सुन सकता, मैं ते अपने होश गवा बैठा। ऐसा प्यार किस्सा ते उसने नजम ते मजनू दे संबंध सुनाई, सुरत जुड़ गई परमात्मा। भाई साहब भाई नंद लाल प्रेम की गल चाहे किसी के संबंध च भी कोई सुनावे, पर सुनन वाले का उस दे नाल जुड़ना हो जाता जिस नाल उसका प्रेम हो। भावें उसने ते मजनू की गल सुनाई, भाई साहब जुड़ गए प्रभु नाल। और कहिंदे ने, मगो अज हाले लैली, ना सुना। कितना कोमल हिरदा होवेगा, कितना प्रेम नाल भेजिया होया हिरदा होवेगा, गल मजनू दी सुनी है, जुण गए परमात्मा नाल। परमात्मा दी बाणी सुन के भी मनुख परमात्मा नाल ना जुड़े तो हिरदे कोरे नहीं ते होर की ने, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गुरु दी गल सुन के भी बंदा गुरु नाल ना जुड़े, गुरु दी बाणी सुन के भी मनुख प्रभु नाल ना जुड़े, अजे हिरदे

ਕੋਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀਨੋ ਵੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਕੋ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਿਠਾਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਰਸ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੈਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੰਧ ਲੋਭ ਦਾ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲੋਭ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੱਤਾ ਬਰਵੰਡ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲੈਣੇ ਦੀ ਫਿਰਾਈ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਕੱਟੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈਣੇ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਲੈਣੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਲੈਣੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਏ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਭਗਤ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੰਧ ਲੋਭ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਲੋਭ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਬਣਨਾ ਉਸਨੂੰ ਅਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਵੇਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਉੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਵੇਂ ਜੈਸੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮੋਸੇ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ ਇਤਨਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
नहीं गुरु, तू कितनी बराबरी देवें महान, तू कितना भी आखें तेरे मेरे च कोई अंतरा नहीं है अंतरा, तू ते सूरज है मैं एक जर्रा, तू ते सागर है मैं तो एक निक्की जी बूंद, मैं तेरी बराबर का किथे बिस्माग नाल भर जांदा है। श्रद्धा मनुख नूं देवता बना देती है, प्रेम मनुख नूं मनुख बनांदा है, लोभ ते मनुख नूं पशु बना देता है। या इंज कह लईए, असी संबंध बनांदे हां पशु करके, मनुख करके, देवता करके। श्रद्धा मनुख नूं मनुख नहीं रहण देती, देवता बना देती, बड़ा चानना प्रदान कर देती है, बड़ी रोशनी दे देती है, बड़ा प्रकाश हृदय च हो जाता है श्रद्धा करके, भावना करके। हुण मैं अर्ज करा, एक चौथा संबंध है। पहला संबंध लोभ दा, जो मनुख नूं भी पशु बना देता है, पशु ते पशु है। दूजा संबंध प्रेम दा, मानव दे अंदर मानवता नूं जन्म देंदा है। तीसरा संबंध है श्रद्धा दा, यह मनुख नूं देवता बना देंदा है। चौथा संबंध है भगती दा, यह मनुख नूं परमात्मा बना देंदा है, ईश्वर बना देंदा है। भगती, भगत कहिंदा हे प्रभु ठीक है, मैं बूंद हां तू सागर है, मैं जर्रा हां तू सूरज है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तेरी ही बूंद हां, किसी होर दी नहीं, मैं तेरी ही किरण हां ऐ सूरज, किसी होर दी नहीं। इस वास्ते ऐलानिया कह देंदा है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कह, तेरे ते मेरे च की अंतर है, बराबरी। प्रेम दे जद बराबरी आउंदी है मानव मानव बनदा, भगती दे जद बराबरी आउंदी है मनुख परमात्मा हो जांदा, हर का भगत सो हर ही जे। प्रत्यक्ष रूप दे च, साकार रूप दे च, किधरे परमात्मा दे दर्शन करने तो भगत दे दर्शन भगवान दे दर्शन। संत राम में भेद कछ नाहीं, एक जन कई मैं लाख करोड़ी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने संत ते राम विच कोई भेद नहीं, ये दोवें इक्को ही है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, भगत रविदास, कनक कटक जल तरंग जैसा, तू एक सोने की शिला है मैं उसो बनया होया गहना, तू सागर है मैं उसकी एक तरंग हां लहर, ठीक है मैं लहर हां पर मैं तेरी ही लहर, ठीक है मैं किरण हां पर मैं ऐ सूरज तेरी ही किरण हां, तेरे ते मेरे च की अंतर। इत्थे भगत अपने विच भगवान दे दर्शन करता है। भगत कबीर कहंदे ने बिगड़ियो कबीरा राम दोहाई, साच भयो अन कते न जाई, मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना, ईश्वर होना, इस तो बिना इसकी तृप्ति नहीं होगी। भटकदा भी रहेगा, जमदा ते मरदा भी रहेगा, दुखी भी रहेगा, संतापग्रस्त भी रहेगा, वक्ती तौर पर आनंद रस भी बनता रहेगा, लेकिन कुरलांदा भी रहेगा। क्योंकि जितने चिर तक मंजिल की प्राप्ति नहीं आती, मंजिल की है मनुख का परमात्मा होना, मनुख हुक्मरान हो गया, धनवान हो गया, चोटी का साइंटिस्ट हो गया, बड़े तो बड़ा पंडित हो गया, विद्वान हो गया, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य है मनुख का भगवान होना। शमस तबरेज खुदा के अगों प्रार्थना करते हैं, मन तो शुदी तो मन शुदम, मन जान शुदी तो तन शुदम, ई कसना गोयद बाद अजें
मन दे गरम तो दे गरी। बड़ा एक महान फकीर होया ईरान विच, कहिंदा खुदा तू मैं हो जावे, मैं तू हो जाव, मैं तन हो जावा, तू जान हो जावे। फिर कोई ए ना आखे खुदा कोई हो रहे ते शब्द तबरेज कोई हो। की कसना गोए दबाद अजी मन दी गरम तो दी गरी। तू कुछ हो रहे मैं कोई हो रहा, ऐसा कोई ना आखे इस तरह आपा हो जाइए। वो ते मंग पिया करता है मैं तन हो जावा तू जान हो जावे, मैं तू हो जावा तू मैं हो जावे। फिर कोई ये ना आखे कि असी अलग अलग आ दीगर। रविदास कहने ने अपा तो एक हो गए, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। सच्ची तृप्ति उस दिन मिलती है मनुख नु जद मनुख परमात्मा हो जाता। जैसे परमात्मा के जन्मना ते मरना नहीं है, ऐसे मनुख के अंदर जीवन की लालसा खत्म हो जाती है, मरण का भय भी खत्म हो जाता। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। तू सर्व दिया प्रित पाले लेखे सास गरास। जीवन की आस उतने चिर तक बनी रहती है जितने चिर तक इस जीवन तो कोई उच्चा जीवन ना मिले। मरण का भय भी उतने चिर तक बनिया रहता है जितने चिर तक इस जिंदगी तो कोई उच्ची जिंदगी नहीं मिलती। मौत का भय है, इस गल का सबूत है, अजे इसनों वो जीवन प्राप्त नहीं होता। जीवन की लालसा इस गल का सबूत है, अजे उसनों जीवन मिलिया ही नहीं जिन्हों परम जीवन कहते। जिंदगी लोभ दे बतीत हो रही है, पै दे बतीत हो रही है। और मैं अर्ज करा मनुख किधरे झुकदा भी है या ते लोभ करके झुकदा या पै करके झुकदा है। लोभ करके झुकदा है इस तो कुछ मिल सकता है, बह करके झुकदा है इस वास्ते झुकदा है कुछ खो सकता है। खोवे ना तो झुक जाइए, सजदा पिया करदा है खोवे ना। या ते डरदा मारा झुकदा या लोभ का मारा जो है झुकदा। झुकण दे ए दो ही कारण होंदे ने। इस जीवन तो जब उच्चा जीवन मिल जाता है जीवन की लालसा नहीं रह जाती, मरण का भय नहीं रह। लोभ ते भय दोवें समाप्त होंदे ही मनुख परमात्मा का रूप हो जाता है, ईश्वर का रूप हो जाता है। ये चार तरह के संबंध ने। किस तरह के संबंध विच असी जी रहे हैं? शेख सादी साहब कहते ने तू खुद ब मुनसब शुद्ध, अपना मुनसफ आप बन, अपना फैसला आप कर। तू पशुआं वाले संबंध जोड़े ने, मनुखां वाले जोड़े ने, देवतियां वाले जोड़े ने कि रब वाले जोड़े। तू किस तल पे जी रहे हैं? पशु दे तल पे जी रहे हैं, मानव दे तल पे जी रहे हैं, देवते दे तल पे, फरिश्ते दे तल पे जी रहे हैं कि प्रभु दे तल पे जी रहे हैं? ये फैसला दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा साडे मन दे चात नहीं मार सकता। तो खुद बा मुनसफ शब्द, अपना मुनसफ आप बन। जितने चिर तक मनुख को रब वाला जीवन प्राप्त नहीं होया, ये जमदा भी रहेगा, मरदा भी रहेगा, दुखी भी रहेगा, संतापग्रस्त भी रहेगा। बूंद का सागर हो जाना तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। ये बूंद का भविष्य है सागर हो जाना, ये किरण का भविष्य है सूरज हो जाना, ये मनुख का भविष्य है परमात्मा हो जाना। मन तो शुद्ध तो मन शुद्ध, मन जान शुद्ध तो तन शुद्ध। ई कसना गोए दबाद अजी मन दी गरम तो दी गरी। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मेहरामत करन, बख्शिश करन, इस तरह की प्यास, इस तरह की तड़प अंदर पैदा होवे कि परमात्मा होना है। कबीर ते कहने मैं हो गया, बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कते न जाए। मैं ते सच हो गया, हुण सच ते परमात्मा है। कबीर कहने आपा सच हो गए, हुण मिथिया नहीं रहे, हुण मिट नहीं सकते, आपा सच हो गए, सच दा रूप हो गए। इस वास्ते कबीर ते ऐलानिया कहते ने हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए।
सतगुर रहमत करन, ये सुभाग इसे जीवन दे सानू प्राप्त होवे ताकि बार बार जन्म मरण तो छुटकारा मिले। इतनी सेवा इस वक्त प्रवान करनी, कल दी हाजिरी भर के आप तो फिर छुट्टियां लवेंगे। अगला प्रोग्राम दासां दा, दो दिन का झांसी, एक दिन का ग्वालियर है, एक दिन का इटावा है, दो दिन कलकत्ते तो बाद फिर सारा टूर पंजाब का है। धन गुरु अंगद देव जी महाराज के संबंध में प्रोग्राम चलने ने, नामवर जथे बैठे हुए ने, बड़े सोहने सोहने विचारक बैठे हुए ने, बड़े चरणों की बेनती है सारिया सरवण करके जो है जायो। और सारे ही खिड़े हुए फुल ने अपनी अपनी महक लेके आए ने, जरूर बैठ के इन्हों सरवण करना, कोई बहुत ज्यादा समा नहीं होया। सारिया का बार बार धन्यवाद। बुल चुक दी चवा, वाहेगुरु जी का खालसा।

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उचारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती हुई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहण वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकथ है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदिया होया थक जावा, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द ए भी वरतने हां कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी

0: नहीं, बहुत अवतारी पुरुष शस्त्रधारी भी हैं, जैसे धनुषबाण श्री राम कोल है, जैसे सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण कोल है, जैसे तलवार मोहम्मद साहब दे जो है हाथ दे चाहे, और इसी तरीके नाल परशुराम कोल कुल्हाड़ा है, बरछा है, हनुमान दे कोल गदा है, गदा विष्णु जी कोल भी है, और इस तरीके नाल असी देखते हैं बहुते अवतारी पुरुष पैगंबरी पुरुष धारी ने केसा धारी ने, जैसे जैसे पैगंबरां नू अवतारा नू मनना घटता गया, उन्हां दा सत्कार सन्मान घटता गया, क्योंकि जितनी मिकदार विच मनुख का अहंकार वधदा है उतनी ही मिकदार विच अवतार का सत्कार घटता है। ते जिस दे लई कोई सत्कार नहीं रहा आदर नहीं रहा उस दे पिछे चलन की लोड़ की है। हाँ कभी कभी नकली राम बन के चलो सामने एक तमाशा कर देता, नकली जूड़ा सिर से रख के नकली दाढ़ा मुखड़े से लगा के इस तरह नकल पेश कर देती, लेकिन पेश करना भी इस गल का सबूत है कि जूड़ा केस इन्हों अवतारी पुरुषों ने धारण किए हुए सन, और जे इन्हों की उस जमाने विच लोड़ सी तो अज भी लोड़ है, अगर अज लोड़ नहीं है तो फिर जूड़े तो बिना ही राम पेश करना चाहिए, दाड़े तो बिना विश्वामित्र ते विशिष्ट नो तेज से पेश करना चाहिए। ऋषि मुनियां दा स्वरूप, पैगंबरां दा स्वरूप, गुरु अवतारां दा स्वरूप धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सानू प्रदान किया, और प्रदान करके साफ आग्रता खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। जिवें चंगी औलाद मां बाप दे नाम नू रोशन कर दीए, तिवें धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन ऐ खालसा तेरा जीवन इतना उच्चा है और तू ऐसा संत स्वरूप बने है, तू मैनू चार चंद ला दिते ने, तू मैनू सजा दिता है माण नाल सतगुरु। इत्थे तक कहिंदे ने इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं तो मोसे गरीब करोर परे हैं। किसी नू शक ना पवे कि खुशामद कीती जा रही है या गल वधा के आखी जा रही है, तो महाराज कहने या में रंत न मिथ्या बाकी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नू साखी करके कह रहे हैं, साक्षी करके कह रहे हैं, गवाही दे के कह रहे हैं कि तेरे ते मेरे कोई भेद नहीं, तू मेरा रूप हो गया मन करके तन करके। जब वाकई बाणी हिरदे प्रवेश कर जाए, रोम रोम दे प्रवेश कर जाए, तो हिरदा गुरु वर्गा बन गया, और तन दे जब ककार धारण कर ले तो तन गुरु वर्गा बन गया। तो गुरु नू माण नाल कहना पैंदा है कि मेरा अपना रूप, तो मेरा अपना रूप। और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे का सत्कार करना पैंदा है, खालसे नू सज्जन कहंदे ने, मित्र कहंदे ने, गुरपूरा करके कहंदे ने, और खालसे नू अपना स्वरूप करके जो है बयान करदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ये अमर देन ये अदुत्ती देन सहजे सहजे अज जगत के चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन सहजे सहजे सतगुरु की दात नू धारण करन दा भी माहौल बनना आरंभ होया है, और एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की इस देन नू अमर देन समझ के, प्रकृति की देन समझ के, परमात्मा की देन समझ के हर मनुख कबूल करेगा, अपनाएगा, अरदास है उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणा कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की ए दात गुरु नानक की बख्शिश झोली दे संभाल के रख सकीए, ताकि गुरु नानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साढ़े ते माण कर सकन, और माण नाल कह सकन खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। मैं खालसे देखा खालसा मेरे विच है, उन कोई भेद नहीं रहा, और रंजक मात्र भी भेद नहीं रहा। या में रंजना मिथया भाखी पार ब्रह्म गुरु नानक।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudalebaudgroup.com.

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
0: जां कॉल किरण @604581 1900।

जुगत पछानी नानक लीन भयो गोबिंद सौ ज्यो पानी संग पानी। हुण बूंद सागर तक पहुंच गई। नामे नारायण नहीं भेद, राम कबीरे भेद ना भाई। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। हुण कबीर राम तक पहुंच गए ने। ते भगत कबीर जद इस अवस्था ते पहुंचे, आग्या चक्र नु विन के अगे लंघे। कहिंदे ने हुण रब दी तलाश नहीं, हुण रब मेरी तलाश दे च है, हुण परमात्मा मेरी तलाश दे च है। बड़ा सुंदर बचन है उन्हां दा। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हर फिरे, कहत कबीर कबीर। हुण ते कबीर दी तलाश है जगत नु, परमात्मा नु। मैनू परमात्मा दी तलाश ही नहीं। हुण ते बूंद ही सागर हो गई। इस अवस्था दा जिक्र गुरु नानक देव जी महाराज इंज करदे ने, सागर में बूंद, बूंद में सागर, अकथ कथा गुरबचनी आदर। इस अवस्था नू बयान करना सतगुरु कहिंदे अकथ कथा है, कथन तो परे है। आग्या चक्र नू विन के जैसे जीवन शक्ति उपर उठदी है, परम धाम दी प्राप्ति हो गई, सहभंग दी प्राप्ति हो गई, ईश्वर दी प्राप्ति हो गई, सचखंड दी प्राप्ति हो गई। हुण मर के की सचखंड जावणा, हुण जीवदियां जी सचखंड दी झलक वेख लई। कहत कबीर जो हर ध्यावे, जीवत बंधन तोरे। इस अवस्था तक करीबन करीबन करोड़ां दे कोई एक कद मनुख पहुंचदा है। जन नानक कोटन में किन्हों, नारायण जहे चीत। अक्सर साधक मूलाधार तक ही रह जांदे ने। कुछ ऐसे ने थोड़ा जिहा होर अगां वधदे ने, कुछ ऐसे ने अध विचकार विच ही रुक जांदे ने, और उन्हां दे पिछे मुड़न की संभावना भी बनी रहिंदी है। क्योंकि संसार की अपनी खिच है और निरंकार की अपनी खिच है। संसार की कशिश का दायरा अपना है, निरंकार की कशिश का दायरा अपना है। इस वास्ते असी कई दफा देखते हैं कि कोई बंदा बड़ी बुलंदियां तो गिरिया है, तो जब बड़ी बुलंदियां तो गिरदा है चोट भी बड़ी लगती है। रेजा रेजा हो जाता बंदा, फीता फीता हो जाता है। ये तो बहुत शिखर है, बुलंदी है। सूरी ऊपर खेरना, इते गिरे तां ठाहरना है। इते घाटी ते चढ़ना है, इते पहाड़ां दी शिखर नू छूना है। पर जे गिरे तां चोटां भी अनंत ने, फिर खराशां भी अनंत ने। और इतनी गल स्पष्ट है कि जोड़ा जितनी ज्यादा बुलंदी तो गिरेगा, उतनी ही चोटां खावेगा, उतना ही जो है जख्मी होवेगा। इस अवस्था विच पहुंच के आग्या चक्र तो अगे लंघ के गिरन दी संभावना खत्म हो गई, यात्रा सफल हो गई, जीवन सफल हो गया। सतगुरु दी बाणी दा फरमान, सफल सफल सफल भई यात्रा, आवण जाण रहे मिले सादा। हुण आवणे जावणे मुक गए, क्योंकि बार बार दा जन्म होंदा है वासना करके, तो वासना ही खत्म। हुण ते प्रार्थना दा जगत, हुण ते ईश्वरी जगत, हुण निरंकार दी दुनिया, हुण ते परमात्मा दी दुनिया। जप आरंभ कीता सी तो जीवन शक्ति मूलाधार तो थल्ले सी, वासना दा जगत सी। अगर ऐसा बंदा जप भी करदा सी, प्रार्थना भी करदा सी, तो वासना वस होके करदा सी। धन मिले, रूप मिले, रंग मिले, पदार्थ मिले, उदी बंदगी दे च भी वासना सी, उदे जप तप दे च भी वासना सी। लेकिन सहजे सहजे जप तप ने मूलाधार तो उपर कीता, वासना दा जगत खत्म होया। और सहजे सहजे साधक साधना करदिया करदिया आग्या चक्र तक पहुंचया, और इसनु विन के अगे लंघया। निरंकार दी दुनिया आरंभ होई, नवे दरवाजे खुले, कोई नवी सूझ मिली, कोई नवी दुनिया दी झलक मिली। और जद कोई पुरुष इस दुनिया विच पहुंचया, तो जद उसनु आख्या गया हुण इस दुनिया दा कोई नक्शा रखो सामने, तो अक्सर इस तरह दे भगतां ने कह दिता है, कहत कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। हुण असी कुछ नहीं कह सकते, मूलाधार तो अगे लंघे सन, कुछ बयान कर दे रहे। सवदिष्टान मणिपुर तो अगे लंघे सन, भगत बोल दे रहे। अनाहद नाथ ते विशुद्ध तो अगे लंघे सन, भगत कुछ कहें दे रहे।
خاموشی دی دنیا آرمب ہو

0: गई, समाधि की दुनिया शुरू हो गई। इत्थे आके गुरु अर्जन देव जी महाराज इंज वर्णन करते ने, बिसम बिसम बिसमें ही भई है लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारा। गूंगा मुस्कुराते पैंदा है, उदा मुस्कुरावना दसदा है, परम रस आया इसनों बयान नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता। इत्थे भगत खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, पर उसकी चुप्पी भी जो बोल जाती है, उसकी खामोशी भी जितना उपदेश कर जाती है, आम बंदियां दा बोलना भी उतना नहीं समझा सकता। आम बंदियां दे बोल भी इतने कम नहीं करते। इस तरह के पुरुष से अबोल अवस्था भी बड़ी कम कर जाती है, खामोशी भी जो है बड़ी कम कर जाती है। तो आ गया चक्कर नूं विन के जिहड़ी अगे दी दुनिया है, इहदे बारे साहिब गुरु नानक देव जी महाराज भी फरमान करते हैं, जे हो जाना, जे मैं उस दुनिया नूं जान लिया समझ लिया, जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई। वो मेरी कथनी तो परे, वो मेरे कहने तो परे, वो ऐसी दुनिया जो मेरे शब्दां च नहीं आउंदी, मेरे बोलण दे च नहीं आउंदी, वो अबोल, वो खामोशी दी दुनिया, वो समाधि दी दुनिया, वो निर्विचार दी दुनिया, वो परम आनंद दी दुनिया, वो सचखंड दी दुनिया, यही बंदे दी मंजिल है। इत्थे पहुंच के ही बंदा पूरा हुंदा है, मर के कोई पूरा नहीं आउंदा। ये गल वखरी एक पंजाबी दी कहावत है, जद कोई बंदा मर जाए तो कहिंदे ने पूरा हो गया, पूरा हो गया। पूरा किस तरह होया? मर के ते कोई पूरा नहीं आता, हां पूरन विच जुड़ के ही कोई पूरा हो सकता है। ते पूरन केवल परमात्मा है, आद पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर। उस पूरन विच लीन होके ही मनुख पूरा होता है, और पूरा केवल परमात्मा है। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जांका नाव, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। इस अवस्था विच पहुंचे हुए मनुख नूं असीं कह सकदे हां पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया है। ए इंसान जमया अधूरा सी, जीविया अधूरा सी, भजन ने सिमरन ने साधना ने इसनु पूर्ण कर दिता है, मुकम्मल कर दिता है। इतनी ते विज्ञानक भी गल मनदे ने कि मनुखी बच्चा अधूरा जमदा है, मुंह विच दंद नहीं ने, पैरां दे चलण दी शक्ति नहीं है, हाथां विच पकड़ दी कोई ताकत नहीं है, जबान विच बोलन तक दी भी शक्ति नहीं है, बुद्धि विच सोचण तक दी भी शक्ति नहीं है, बिल्कुल अधूरा जमे है। सहजे सहजे कादर करीम परिपूर्ण परमात्मा दी साजी ए प्रकृति उहदे शरीर नूं पूरा कर दी है, और मुकम्मल हो जाता है। 14-15 साल तक पैरां दे चलन दी शक्ति आ गई, हत्थां दे पकड़न दी शक्ति आ गई, जबान दे बोलन दी शक्ति आ गई, पूर्ण तौर ते बुद्धि पूर्ण तौर ते सोचण भी लग पे, और दंद मिल गए, वस्तु नूं चबाण दा भी पूरा बल मिल गया। लेकिन चेतना ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है, शक्ति ते बंदे दी उस दिन पूर्ण होंदी है जद पूर्ण नाल जुड़दी है, ते पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ईश्वर है। कई दफा बंदा बाहरों पूरा हो जाता है, अंदरों अधूरा रह जाता है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 Street। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 3 September ਤੋਂ 9 September ਤੱਕ। ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 pound ਦਾ ਬੈਗ 17.98 ਦਾ, ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 pound ਦਾ ਬੈਗ 17.98 ਦਾ, ਅਤੇ BC ਲੰਬੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ 49 pound।
3: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदों मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरा बारे पता लगा, ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नूं है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुक कीपिंग होवे या किसे भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरा नूं। कॉल 604-325-8370 604-325-8370।
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ। 6043491313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 6043491313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.